0: कदे न था कदे में ता कजण था ता कदे में ता कजण ता कदे में ता कजण ताकर ता कता कजण तलिंग ता कता कजण करत करत करत करत करत करत तत तक दरदम तलिंग करत नित तक दरदम तलिंग करत तक दरदम तत तलिंग करत करदम ता किट तलिंग करत नित तक किट ता तलिंग करत करत करत करत करत करत கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக தத்தம் பர கிரடக கிரடக கிரடக ட்ராங் கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக ட்ராங் கிரடக ட்ராங் கிரடக ட்ராங் ட்ராங் கிரடக கிரடக கிரடக ட்ராங் கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக ட்ராங் கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக கிரடக
1: Taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka taka ta